0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 or visit asianfuneralcare.com.
1: My ears, best piece of musical equipment I own. They've been with me through everything, even the 90s. Back when you'd hear about parties from photocopied flyers, before outdoor raves moved indoors. And now, the music's changed, but I wanted to make sure my ears had them. So I did the free online hearing screener from Specsavers and got on a test list. Only took 3 minutes. It's like my own little sound check. Try Specsavers free online hearing screener. Visit the website to find out more. Hearing screener is not a diagnosis.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: Looking to boost your career or just starting out? As the experts in online learning, the Open University has over 200 qualifications to choose from, like business, psychology, computing, and many more. With tutor support and courses that fit around your life, getting those in-demand skills employers are looking for isn't so far away. Register by the 10th of September to get started. The Open University. The future is open.
4: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
5: Oh, terrible weather.
4: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
6: See ya, good luck with the interview.
5: Thank you, bye.
4: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
1: Hello, UK Goro, Big Boss is back. And this time, the family will get one, two chance. Big Boss, only on Colors.
2: Watch Big Boss 20, tonight at 9:30 p.m. on Colors TV.
3: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
4: सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर टेकन फ्रॉम मुसाफिर कैफे लीजा मिश्रा नील अधिकारी रोजाना मेनी ऑफ यू आस्किंग इफ एनीवन सीन मिर्जापुर द मूवी एंड व्हाट योर ओपिनियन माइट बी बिकॉज वी वैल्यू इट इमेंसली आपने देखी क्या फिल्म ये गुस्ताखी की क्या आपने ये

0: जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। नमिता इन वॉल्सॉल, दैट इज द मैजिक ऑफ जगजीत सिंह जी'स वॉइस, राइट? जस्ट टेक्स यू टू अ डिफरेंट प्लेस। सनी इन आइवर, थैंक यू सो मच। आप कहते हैं शबनम, आई लव द शो एंड द म्यूजिक, कीप अप द ग्रेट वर्क, थैंक यू वेरी मच। दिस वन टेकन फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ तुम बिन, ऑफ कोर्स। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज वेंसडे द 9th ऑफ सितंबर की सुबह, शबनम साही के साथ। गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस, ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस, बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स।
3: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी।
0: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. From Mirzapur the movie, Varun Forever on Sunrise.

0: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: 11:50 on Sunrise. My time is almost up. Our lovely Kavita is next. But before that, Stephen Wolves, you left me a voice note saying that therapy is a lot like dating. बहुत लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट स्वाइप करने के बाद अच्छा थेरेपिस्ट मिलता है एंड नो वन टॉक्स अबाउट हाउ मच डैमेज अ बैड थेरेपिस्ट कैन डू. यू स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस. आई एम सॉरी टू नो दैट. यू नो व्हाट, इफ आई हैव नॉट बीन फॉर थेरेपी, इट्स प्रोबेबली बिकॉज इफ आई डिड, माय थेरेपिस्ट मे नीड अ थेरेपिस्ट. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर डे. हैव अ ब्यूटिफुल डे एवरीवन. कल सुबह मिलते हैं 9 बजे.

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।